प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राधा पाठक, स्वीकार करें मेरा नमस्कार।
1: और मैं हूं रश्मि कुकरेती। एफएम गोल्ड के सभी सुनने वालों को और इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
0: और रश्मि, आज बहुत ही हमारे लिए गर्व का पल है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जो समारोह हुआ उसमें पार्श्वगायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: जी बिल्कुल, और अपनी मधुर आवाज जो से सुनने वालों के दिलों पर राज करने वाली अलका याग्निक को जो ये पद्म सम्मान मिला है राधा, ये हिंदी सिनेमा के संगीत जगत के लिए बहुत गर्व का क्षण है। दशकों से जो है उनके गीत हमारी खुशियों में, यादों में और भावनाओं में उन्होंने हिस्सा बटाया है ना, और ये सम्मान उनकी अद्भुत प्रतिभा, समर्पण और संगीत के प्रति उनके अमूल्य योगदान को समर्पित है।
0: अलका याग्निक जी को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई। उनकी आवाज ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। और मुझे याद है रश्मि की 90s का वो दौर जब हर गली हर नुक्कड़ पर सिर्फ अलका याग्निक की आवाज ही सुनाई देती थी और दिलों को बिल्कुल मदहोश करने वाली आवाज थी अलका याग्निक की।

0: गीत हमने सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। आज है निर्जला एकादशी और साल भर की 24 एकादशियों में से सबसे पुण्यदायी और फलदायी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। बहुत सारे लोग तो बिना जल ग्रहण के उपवास करते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और इसमें दान पुण्य और इसमें जो दान दिया जाता है ना, ज्यादातर अन्न जल वस्त्र और पंखे का दान जो है वो बहुत शुभ माना जाता है।
1: देखो राधा, जो हमारी सारी ये जो संस्कृति से जुड़ी हुई है ये परंपराएं, जो इस समय इतनी गर्मी होती है तो ये माना जाता है कि आपके आसपास जो लोग हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन जिनको जरूरत है उनको जरूर अपने साथ लेकर चलें। तो साथ लेकर आप तभी चल सकते हैं जब आप कुछ कर रहे होंगे। उन्हीं से ये बात जोड़ रही हूँ भाई, जब आप कुछ काम कर रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का प्रश्न, यानी कि जब आपको आपकी पहली सैलरी मिली तो वो दिन कैसा था, कैसा लगा, इसी से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। आप हमें बता सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। क्योंकि राधा, पहली सैलरी मिलना ना बहुत भावुक और गर्व से भरा पल होता है, और पैसा ही नहीं मिलता भाई, आपकी जो मेहनत होती है, रातों को जागकर जो आपने पढ़ाई की होती है और आत्मनिर्भर आप बनते हैं, तो ये पहला कदम होता है।
0: और पहली सैलरी मिलने का जो एहसास है जिंदगी में सबसे खास और यादगार पलों में से एक होता है। ये मेहनत की कमाई आपको आत्मविश्वास तो देती है, एक बहुत सुखद अनुभव भी देती है। तो इस पल को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी रश्मि ने बता ही दिया, मैं फिर से बता देती हूँ, fmgoldga@gmail.com। आप इस पर ईमेल कीजिए, हम आपका ईमेल शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। तो अपनी सैलरी को यादगार और उपयोगी बनाने के लिए आपने क्या किया था पहले दिन, तो वो आप हमें जरूर लिखिएगा
1: भाई। कुछ तो अच्छे तरीके आप तुम कहो तो राधा मैं बता दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखो, अपनी कमाई से भाई माता पिता के लिए कुछ खास खरीद सकते हैं, जैसे भाई माँ के लिए साड़ी या घड़ी, या उनके पसंदीदा रेस्टोरों में डिनर करा सकते हैं, लंच करा सकते हैं ना भाई। उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलेगी ना राधा, मैं सच कह रही हूँ कि वो तो सबसे बड़ी कमाई होगी।
0: बिल्कुल सर, और पहली सैलरी हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने माता पिता को दी जाए।
1: हाँ, और भाई माता पिता तो को तो दें ही, साथ में अपने लिए भी कुछ इनाम छांट लें कि भाई आपने
0: की मेहनत है
1: जो मेहनत की थी उसका फल मिला, अपने लिए भी कुछ खरीदें और साथ

0: मंगेशकर के सनम, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। और रश्मि, जो हमने प्रश्न पूछा था, जो आपने प्रश्न पूछा था, उसके हमें संदेश मिलने शुरू हो गए हैं।
1: जी,
0: आपके हाथ में भी मैं देख रही हूँ, ईमेल से निकली हुई है।
1: जी, एक हमारे पास मेल आ गई है नवीन भाटिया जी की। वो कह रहे हैं कि जो पहली सैलरी उन्हें मिली तो उन्होंने अपने मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट ले लिया और जो बाकी बचे पैसे से उन्होंने घूमने चले गए। भाई बहुत अच्छे, घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है। जब आप घूमते फिरते, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे भारत बहुत खूबसूरत है, जरूर घूमने जाइए, है ना।
0: और घूमने से भी तनाव खत्म होता है, और आप जब पहली सैलरी मिलती है ना, उससे जब हम घूम के आते हैं उसका तो अनुभव ही दूसरा होता है।
1: उसकी तो यादें बनती
0: हैं। अब हम एक संदेश और प्राप्त हुआ है, ये वंदना शर्मा का हमें मैसेज मिला है। और ये सेक्टर 6 रोहिणी से लिखती हैं कि जब पहली सैलरी मिली थी उनके पापा के लिए वो सबसे गर्व का पल था। उन्हें याद है कि उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो हेल्थ क्लिनिक में हुई थी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी।

0: रूप में, और कॉलेज की पढ़ाई करते ही उनकी जो उनका जन्मदिन का महीना था उसमें ही उनके जीवन के नए सफर की शुरुआत हो गई थी। उनकी जो पहली सैलरी उन्हें 5,000 रुपए का चेक मिला, उन्होंने सीधे जाकर अपने पापा को दे दिया। वो चेक उनके पापा जी ने बड़े प्यार से देखा और संभाल कर अपने पास रख लिया। उनकी आंखों में जो गर्व और खुशी का संतोष था वो उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उन्हें लगा, वंदना जी को लगा कि उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत जो है ना, वो मुस्कान उनके पिता की आंखों में आ गई है। और वो आगे ये भी लिखती हैं कि पापा जी को संगीत सुनने का बहुत शौक था। उन वंदना जी की पहली कमाई की खुशी के लिए उन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा, और जब वो घर आया उस पर पहली बार गाने बजे, ऐसा लगा जैसे घर में खुशियां गूंज रही हों। उस म्यूजिक सिस्टम की हर धुन में पापा का प्यार, उनका आशीर्वाद और वंदना जी की मेहनत की मिठास बसी हुई थी।
1: भाई वाह भाई, आप जब आप संगीत सुनते हैं तो वैसे ही तनाव दूर हो जाता है, और अगर एफएम गोल्ड चैनल चल रहा हो आकाशवाणी दिल्ली का या इंद्रप्रस्थ चैनल चल रहा हो तो बात ही क्या है ना।
0: और खूबसूरत गाने जब सुने जाते हैं और वो नगमे जो होते हैं ना हमारी यादों में बसे होते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: कोई भी नगमा हम सुनते हैं ना तो वो हमेशा हमारे दिल के करीब होता है। हमें लगता है कि अरे ये हमारे दिल की किसी याद से जुड़ा हुआ है।
1: जी वो तो जरूरी है ही, लेकिन एक बात और जरूरी है राधा, मैं चाहती हूँ तुम उसके बारे में जरूर बोलो।
0: हम बात कर रहे हैं महिलाओं की कि महिलाएं पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं रश्मि जी, लेकिन अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं।
1: जी जब कमाई बार बार तो, होता है। हाँ जी बिल्कुल, कमाई तो जरूरी है लेकिन पोषण का ध्यान रखना भी बहुत
0: बहुत जरूरी है। और 30 साल के बाद एक उम्र, वैसे तो पोषण का ध्यान हर उम्र में रखना चाहिए, बचपन से ही शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन एक उम्र होती है कि 30 के बाद आपको न्यूट्रिशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी उम्र में शरीर में हार्मोन्स बदलते हैं, इसका असर जो होता है शरीर में पोषक तत्वों के इस्तेमाल पर पड़ता है, खासकर कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत बढ़ जाती है जो हड्डियों के लिए जरूरी है। तो उसके लिए रश्मि जी क्या करना चाहिए?
1: भाई हम तो ये कहेंगे भाई शरीर में आयरन की अगर कमी हो जाए तो थकान महसूस होती है, कमजोरी आती है, चक्कर आने लग जाते हैं, चेहरा फीका पड़ जाता है, और कई बार तो राधा बाल भी झड़ने लग जाते हैं, तो एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या जरूरी है कि भाई अपने खाने में फल लें, सब्जियां लें, दालें लें, अनाज लें और प्रोटीन जरूर शामिल करें, और ये बहुत महंगे चीजें नहीं है, जो रोजमर्रा के जो आपके खाने हैं वो अपनी थाली में संतुलित रूप से मौजूद होने बहुत जरूरी है।
0: क्योंकि आयरन के लिए पालक ली जा सकती है, दाल है, बीन्स है, कैल्शियम के लिए दूध, दही, हरी सब्जियां हैं, विटामिन डी के लिए भाई आप धूप में बैठिए सबसे बढ़िया, तो सर्दियों में
1: जरूरी है,
0: और आप हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज खा सकते हैं। तो ये लगता है ना कि भाई न्यूट्रिशन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे या अलग से कुछ करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। आप छाछ पीकर प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
1: जी
0: डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए।
1: जी जरूरी है। और एक ऐसी चीज है जो कि बहुत जरूरी है, वो है पानी पीना, है ना, अपने आप को हाइड्रेट रखना। गर्मी के मौसम में पानी और तरल पदार्थों का भी सेवन करते रहें ताकि आप हमेशा तरोताजा रहें, है ना राधा?
0: बिल्कुल।

0: मधुमति फिल्म में ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड से। और अब एक ईमेल हमें और मिल गया है जिसमें डॉक्टर विनोद कुमार हैं जो लिखते हैं रोहिणी से कि मुझे सैलरी मिली थी जब पहली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था और मैंने अपनी पूरी सैलरी अपनी मम्मी के हाथों में दे दी थी। देख क्या बात है रश्मि।
1: देखो ये समय उस समय का है कि जब जो तनख्वाह मिलती थी ना वो कैश के रूप में नकद रूप में मिलती थी। मुझे याद है मैंने भी अपने जो पहली तनख्वाह थी वो पूरी की पूरी अपने पापा के हाथ में रख दी थी। तो उस समय का वो समय ऐसा ही था कि कैश मिला और
0: कैश में तनख्वाह
1: जी और हमारे माता पिता को वो सौंप दिया और जो उनकी खुशी चेहरे पे जो झलकती थी ना वो हमारी सबसे बड़ी कमाई होती थी।
0: और उसमें से वो थोड़े से पैसे रख देते थे भगवान के नाम के
1: जी,
0: थोड़ा सा भगवान के नाम का, क्योंकि भगवान के नाम का भी हमारे देश में परंपरा रही है कि थोड़ा सा हिस्सा जो है ईश्वर के नाम पर दान पुण्य के लिए निकाला जाता है।
1: और एक और जवाब हमारे पास आ गया है। आप हैं हमारे साथ सुरभि, ये दिल्ली से हमारे को मैसेज कर रही हैं। ये कहती हैं कि जब पहली सैलरी आई तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी और एक महीना जब बीता तो समझ में आया कि भाई बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो
0: ये बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने, क्योंकि अब आजकल की जो जनरेशन में देख रही हूँ ना उनको तनख्वाह का के मायने नहीं पता है तो वो क्या करते हैं तनख्वाह ना खर्च करना शुरू कर देते हैं और जब महीने का अंत आता है तो पता लगता है जी बजट तो बना ही नहीं आपने तो, क्या किया।
1: तो जो हमारी जेंजी है वो जानती है कि बजटिंग कितनी जरूरी है, उसका सही इस्तेमाल जो आपकी मेहनत से कमाए गए पैसे हैं वो भी बहुत जरूरी है। मौज मस्ती भी कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए और अपने भविष्य के लिए भी कुछ निवेश करते हुए जरूर चलिए। और भाई जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप मेट्रो में जाते हैं, बसों में जाते हैं, तो बसों में क्या सुविधा दे रही है दिल्ली सरकार और क्या क्या जरूरी है यही बताने जा रही है राधा।
0: जी हाँ, जैसे कि ये तो सबको पता ही है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक पिंक सहेली कार्ड सार्वजनिक परिवहनों जैसे बस और मेट्रो के सफर की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: इसके लिए जगह जगह कैंप भी लग रहे हैं और बस डिपो में भी आप बनवा सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना है और आपका दो मिनट में वो कार्ड बन जाता है जिसमें आप बस और मेट्रो में आसानी से सफर कर सकते हैं।
1: लेकिन
0: में तो फ्री है,
1: जी जी बिल्कुल।
0: लेकिन मेट्रो में आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा।
1: लेकिन एक और सुविधा मिली है अब तो भाई, लेडीज स्पेशल जो बसेज हैं उसमें महिला पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन यात्रा को और भी सुरक्षित बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है।
0: हाँ बिल्कुल अच्छी। और इसमें ना सरकार ने कुछ मार्गों को ना टारगेट किया है कि ये जो जहाँ ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सफर करती हैं ऑफिस टाइमिंग में वहाँ लेडीज स्पेशल बसें चलाई जाएंगी और सुबह शाम महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।
1: और सराधा अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी योजना है कि महिला होमगार्ड मार्शलों की भी तैनाती की जा सकती है।
0: और उसमें डीटीसी बस में एक पैनिक बटन भी लगाया जाएगा जो 112 जो इमरजेंसी नंबर है पुलिस दिल्ली पुलिस का, वहां से एकदम से इमरजेंसी में वो उस बस को जोड़ देगा।
1: भाई वाह क्या बात है, इससे तो और भी सुरक्षा बढ़ जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने में लगने वाला समय भी कम होगा और जो महिला यात्रियां होंगी उनको त्वरित और प्रभावी मदद मिल पाएगी।

0: गीत हमने पारस मणि फिल्म से लिया था लता मंगेशकर की आवाज में। और रश्मि एक हमें मेल और मिल गई है, ये लिखते हैं पुनीत रावत, ये लिखते हैं शहादरा की तरफ से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि जो खुद के पैसों से चीजें खरीदने पर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है
1: जी।
0: और एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि पैसों को सही जगह खर्च करने और बचाने की समझ भी बढ़ती है। खुशी से ये लिखते हैं कि पहला जो सैलरी मिलती है ना जब पहली बार, तो पहला वेतन घर वालों या माता पिता को देने पर जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है
1: जी। और एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है, मयूर विहार से रमा हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने बताया कि पहली सैलरी से जो उन्होंने क्या किया कि अपनी दादी के लिए चश्मा बनवाया। भाई वाह, तो उनकी मुस्कान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कमाई थी, और ये भी लगा उन्हें कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, और उन्होंने सबसे पहले बिजली का बिल जमा किया। वाह, और छोटे भाई बहन के लिए गिफ्ट खरीदे और उनकी खुशी देखकर उनका दिन बन गया। भाई वाह, कितनी प्यारी ये बहन है जो अपने भाई बहनों
0: की इतनी जिम्मेदारी के साथ पहली सैलरी को इस्तेमाल किया इन्होंने।
1: जी हाँ, तो जो ऐसी लड़कियां होती है ना वो तो भाई इतनी जिम्मेदार अगर लड़की हो तो वैसे ही घर की शान होती है ये लड़कियां, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अब समझ में आता है
0: कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो आजकल बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि वो इस काबिल बन पाए और आत्मनिर्भर बन पाए।
1: जी बिल्कुल,
0: जब वो घर की जिम्मेदारियों को अभी से समझ रही है तो आगे तो फिर कितना अच्छा रहेगा उनके लिए।
1: बिल्कुल, तभी तो हमारा जो देश है और भी विकास की ओर जाएगा, है ना।
0: हाँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो घर पर जो है अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें उसकी कुछ आसान बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं।
1: भाई 21 जून अभी गया है और मुझे लगता है तुम भूल तो नहीं गए 21 जून
0: नहीं, नहीं, लेकिन योग दिवस तो इसी जून में ही था, अभी तो जून चल ही रहा है, लेकिन योग जो है वो हमेशा ही करना चाहिए, उसके लिए एक दिन का महत्व नहीं है योग के लिए। योग और घर पर भी योग किया जा सकता है, इसमें क्योंकि मुझे कई महिलाएं मिलती हैं, कहती हमें तो वक्त ही नहीं मिलता, हम कैसे समय निकालें, तो भाई घर पर भी आप जल्दी उठिए, पानी पीजिए, ताजी हवा लीजिए, कुछ देर शांत बैठिए। शांत बैठना ही अपने आप में जो मेडिटेशन होता है ना कि अपनी सांसों को नियंत्रित कीजिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अरे ध्यान कैसे करते हैं, तो आप बैठिए तो सही,
1: दो
0: मिनट ध्यान तो लगाइए।
1: बिल्कुल, और सुबह के समय अभ्यास करना, शरीर को जगाना, मन को सक्रिय करना और शांत ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए तो बिल्कुल आदर्श समय है। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि जो अपने शरीर को थोड़ा खिंचाव वाले आसन करें, बहुत आसान आसन होते हैं, भाई आपका जो शरीर होता है वो बिना जल्दबाजी किए हुए भी ऊर्जावान बन जाता है। और जैसे शाम का अगर समय है जब आप घर वापस लौटते हैं

0: थोड़े समय बाद, तो आप ऐसा करें उस समय भी थोड़े जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं, अपने मन को तैयार कर सकते हैं, साथ में ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल्कुल धीमी गति वाले व्यायाम चुन सकते हैं ताकि आपको आराम भी मिले और दिन भर की थकान भी दूर हो जाए।
1: और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए जब 20 और 8 का एक रेशो का, अभी मैंने एक योग दिवस की टॉक में सुना था कि 20 मिनट आप बैठकर काम कीजिए और एक बार 8 मिनट के लिए आप थोड़ी सी वॉक करिए आइए।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए ठीक रहता है कि एक चेयर पर बैठ के लगातार काम करना भी ठीक नहीं है। ये भी योग है कि आप थोड़ा सा टहल लीजिए काम के बीच बीच
0: जी, और अगर आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो वहां पर भी आप छोटे छोटे जो व्यायाम है अपने शरीर के अंगों को खींचने वाले वो कर सकते हैं ताकि आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित, गर्दन से संबंधित जो समस्याएं वो ना हो।
1: बिल्कुल।

0: टोक्यो फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और रश्मि, आज हम पूछ रहे हैं, हमने अपनी ईमेल आईडी सबको दी है, किस लिए?
1: भाई सवाल पूछा था कि पहली सैलरी जब मिली तो आपने उसका क्या किया और आपको कैसा लगा।
0: और हमें बहुत सारे संदेश और ईमेल्स मिल रहे हैं। ये ईमेल है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से। लिखते हैं कि पहली सैलरी अपने माता पिता को देना बरकत होती है। इज्जत और पैसा कमाना मुश्किल है, कमाकर उसको संभाल कर रखना और भी मुश्किल है।
1: जी बिल्कुल। और एक और हमारे साथ संदेश हमें प्राप्त हुआ है, आप हैं विनोद गुड़गांव से, आप कह रहे हैं कि पहली सैलरी मिलते ही मैंने एटीएम से पैसे निकाले और कई मिनट तक उन नोटों को देखकर मुस्कुराता रहा। भाई वाह। और ये कहते हैं कि पहली सैलरी से पूरे परिवार के लिए मिठाई लेकर गया, घर का माहौल ही बदल गया। और वो जो स्क्रीनशॉट था ना, वो पहली सैलरी का, मैंने आज भी फोन में संभाल कर रखा है, क्योंकि वो सिर्फ रकम नहीं थी।

0: इतनी मेहनत की एक पहचान थी। भाई वाह विनोद, ये तो बहुत अच्छा और नया बिल्कुल अनुभव है ना,
1: और इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है
0: जी।
1: क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सैलरी कहते हैं कि भाई अब पहली सैलरी कई बार सब अपने माता पिता को दे देते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि अपने माता पिता को। लेकिन एक बहन ने अभी पहले लिखा था कि उन्होंने बिजली का बिल भरा, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो सैलरी आप तभी कमाओगे अच्छी जब करियर अच्छा होगा, और करियर के कई सारे विकल्प हैं। एक विकल्प मेरे दिमाग में आ रहा है राधा कि बायोटेक में करियर भी बहुत अच्छा किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसकी जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ चुके हैं
0: जी।
1: ये सिर्फ रिसर्च तक, क्योंकि पहले लगता था बायोटेक्नोलॉजी में इसने बीएससी करी है या कुछ किया है तो ये तो रिसर्च है, रिसर्च इसके अलावा भी इसका तकनीकी का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
0: भाई बहुत मांग तेजी से बढ़ रही है, चाहे अच्छी सेहत हो, कारगर दवाइयां हो, बढ़िया फसल तक बायोटेक्नोलॉजी की जो है जरूरत पड़ती है। और हम ये कहेंगे कि इंडस्ट्री में नए विकल्प आ रहे हैं, ये क्षेत्र अब केवल रिसर्च तक सीमित नहीं है जैसा कि तुम बता रही थी, बल्कि इसका दायरा बहुत बढ़ गया और ये बिल्कुल शानदार अवसर है युवाओं के लिए, और इसमें संभावनाएं अपरिमित संभावनाएं हैं।
1: हाँ, अगर आपने मतलब बायो ले रखी है 11 12th में, चाहे होम साइंस के साथ लियो चाहे साइंस के साथ लियो, तो आप इसमें कृषि, फूड टेक, स्वास्थ्य, जैव आधारित तकनीकी में अगर रुचि भी हो तो आपके लिए क्षेत्र बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस आदि विषयों में 12वीं के बाद स्नातक स्तर यानी बीए की पढ़ाई कर सकते हैं।
0: और इसके अलावा इस क्षेत्र में शोध किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल में काम किया जा सकता है, हेल्थ केयर में जुड़ सकते हैं, भाई कृषि में भी बायोटेक्नोलॉजी का आजकल बहुत प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण में जा सकते हैं, और भाई औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहां भी इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर है। तो हम तो ये कहेंगे कि चाहे सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र हो, दोनों में जो अगर बायोटेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित हैं तो इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।
1: बायोटेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और जीनोमिक्स के उपयोग से अनुसंधान और उत्पाद विकास की गति में बढ़ रहे हैं, और इससे नए रोजगार और विशेषज्ञता के अवसर भी पैदा हो रहे हैं।
0: भाई आजकल हम आए दिन बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसमें तो वैसे ही बहुत रोजगार है।
1: हाँ, तो बायोटेक्नोलॉजी को ऐसा मत सोचिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो बेझिझक आप इसमें करियर बना सकते हैं।

0: हम सुन रहे थे काला सोना फिल्म से आशा भोसले और डैनी की आवाज। और आपके हाथ में मैं देख रही हूँ मेल है और आपके चेहरे की खुशी बता रही है
1: जी। बड़ी खूबसूरत सा ये संदेश मेरे पास आया है। ये संदेश हमें भेजा है वैशाली से रश्मि ने। इन्होंने क्या किया, ये कहती है कि मैंने नौकरी शुरू की शादी के बाद, और जब पहली सैलरी मिलने का समय आया तो इन्होंने बैंक में बकायदा खाता खोला जी, और अपने सपनों का खाता खोल दिया ऐसा लगा उन्हें। और वो कहती हैं कि मैंने, मेरे जो पति हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो कभी कभी जो उनमें से पैसे मिलते हैं तो मैं उनकी भी मदद करती हूँ। पहली सैलरी से मैंने एक पौधा खरीदा था, सोचा था जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा वैसे ही मेरी तरक्की भी बढ़ेगी। भाई वाह, कितना सुंदर विचार है।
0: हाँ, सोच कितनी अच्छी है कि पौधा घर में लगाया कि ये पौधा भी बढ़ता जाएगा और मेरी तनख्वाह बढ़ती जाएगी या तरक्की घर में होती रहेगी। और वैसे भी हरियाली, पौधे जो होते हैं ना वो घर में हमेशा खुशहाली लेकर आते हैं।
1: और एक बहुत अच्छी बात, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गई आर्थिक रूप से, उन्होंने अपना खाता खुलवाया बैंक में और अपने पति की भी मदद की आर्थिक रूप से। भाई बिजनेस में कभी कभी पैसे की जरूरत भी पड़ती है,
0: तो इससे पति पत्नी का जो रिश्ता है ना कितना मजबूत हो गया होगा
1: जी, और भी मधुर हो गया होगा। लेकिन कभी कभी तो बहस भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा समय भी आता है पति पत्नी की बनती नहीं है,
0: क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है रश्मि वो बहुत प्यारा होता है। कभी प्यार कभी तकरार, ये चलता ही रहता है। अब चाहे अनचाहे कहा सुनी बहसबाजी कई बार हो ही जाती है
1: जी।
0: और लेकिन कुछ देर बाद ही मामला शांत भी हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी कई बार तो कुछ ऐसी बातों पे आपको लड़ता हुआ पाते हैं ना कि वो बिल्कुल बचकाना लगता है कि अरे हम लड़ क्यों रहे थे।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: कई बार सोच का अंतर होता है, कई बार होता है हम बातचीत नहीं कर पाते, समस्या सुलझा नहीं पाते, कोई अपने भावों पर मतलब काबू नहीं रख पाते, एकदम से गुस्सा आ जाता है। लेकिन बात बाद में समझ आती, लगता है कि आप छोटी सी बात थी।
1: जी बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे कि चाहे आपको ये लगे कि आपकी जो बातें हैं वो सहमति ना हो मुद्दों पर, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक दूसरे की भावनाओं को नकारे नहीं, और गलती स्वीकार करना कोई इसमें कोई कमी नहीं आ जाती आपकी उसमें। और हम तो ये कहेंगे कि अगर आप शांत रहेंगे तो बहुत अच्छी संभावना है कि रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा।
0: मतलब गलती हो तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है।
1: बुराई नहीं है, आप दोनों सही हो सकते हैं, इस बात को समझना चाहिए और बातचीत को सही और गलत इस चीज में उलझने नहीं देना चाहिए,
0: और एक दूसरे की कमियां कभी नहीं गिनानी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कमियां जो होती हैं हर रिश्ते में होती हैं, और भावनाएं जो होती हैं वो कमियों को गिनाने के लिए नहीं होती हैं।
1: जी बिल्कुल। और हम तो ये कहेंगे कि उस समय में थोड़ा सा एक गैप ले लें, है ना, ताकि आपका जो दिमाग है वो ठंडा हो जाए, है ना, आपका जो नर्वस सिस्टम है, बीपी और जो धड़कने हैं वो नियंत्रित हो जाए और आपका तनाव कम हो जाए, और एक अंतराल के बाद मुझे लगता है कि आप बेहतर बात तब कर पाएंगे।
0: और ऐसी भी जरूरत होती है जहां अगर आपको लगता है सॉरी बोलना है वहां सॉरी बोलिए, और अगर आपको लगता है कि सामने वाले की तारीफ की जा सकती है तो एक दूसरे की तारीफ कीजिए।
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल, ताकि सामने वाले को भी खुशी हो, चाहे पति हो या पत्नी, मतलब तारीफ तो सुनना सबको ही अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल। अगर आप एक छोटी सी तारीफ कर दें भाई खाना बहुत अच्छा बना है, तो विश्वास कीजिए आपकी पत्नी जो है और प्रेम से और मेहनत से, भाई सारी पत्नियां बड़ी मेहनत से घर की सेवा करती हैं, खाना बनाती है, घर का काम करती है, पर एक अगर छोटी सी तारीफ अगर आप कर दें तो विश्वास कीजिए इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, और जो प्रसन्नता है वो मुफ्त में चली आती है।
0: हाँ, और आदर का भाव भी एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है।
1: और ऐसी पत्नी को भी सोचना चाहिए भाई दिन भर का
0: बहुत अच्छे लग रहे हो।
1: और जो मेहनत करके जब व्यक्ति घर पे आए तो थोड़ा सा उसे शांत होकर बैठने दे, और फिर अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते,
0: क्योंकि ये जो जिंदगी का सफर है उन्हें एक साथ ही तो काटना है।
1: जी बिल्कुल।

0: और एक और मेल प्राप्त हुई है, आप हैं राजू अग्रवाल चौधरी वास हरियाणा से, आप कह रहे हैं कि जब मैं पहली सैलरी लेकर आए तो एक पुस्तक खरीदी थी, घर वाले खुश हुए। अब मेरे दोस्त के लड़के की ड्यूटी जो है वो आकाशवाणी हिसार में चल रही है, तो मेरे दोस्त ने भी खुशी में के मौके पर पार्टी रखी, खुशी मनाई और पंचमुखी मंदिर में दर्शन भी किए। आप हैं मंटू शर्मा और रोहित वशिष्ठ जो हैं वो जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं अमृतसर से मोबाइल ऐप पर ये सुन रहे हैं और कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा राधा पंकज बिंदल जो है वो कह रहे हैं जब पहली सैलरी मिली तो सत्संग के काम में लगाई। आप हैं काम चौधरी वास हिसार से पंकज अग्रवाल, राजू अग्रवाल, केशव।
1: और आप सुन रहे हैं ये गीत मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।
0: हम समेट रहे हैं ये कार्यक्रम
1: को, तो कार्यक्रम घर आंगन से राधा पाठक
0: और रश्मि कुकुरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

당근. 아프게 아스티트와 아프게 벽티트와 세 주라. 아프가 갈 앙근.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा हूं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा

0: आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jaishankar said international cooperation is needed to confront challenges like COVID-19.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। इसी के साथ हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट रिया प्रकाश। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे उस फिल्म का नाम है खिलौना। जी हाँ, खिलौना 1970 में बनी भारतीय हिंदी सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार ड्रामा फिल्म है। एलवी प्रसाद द्वारा निर्मित और चंदन बोहरा द्वारा निर्देशित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के मुख्य कलाकार संजीव कुमार विजय कमल के किरदार में है, मुमताज चांद के किरदार में है, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी के किरदार में है और जितेंद्र मोहन की भूमिका में शामिल हैं। आगे इस फिल्म से जुड़ी हम आपको और भी जानकारियां देंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म खिलौना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट तो साबित हुई ही, साथ ही फिल्म का संगीत बेहद सफल रहा। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिल के करीब हैं। और 1971 में 18वें फिल्मफेयर पुरस्कारों को कुछ 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से इसने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मुमताज ने पुरस्कार प्राप्त किया। अन्य नामांकन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजीव कुमार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता जगदीप, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए गुलशन नंदा और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए मोहम्मद रफी भी नॉमिनेटेड रहे।

0: रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे खुश रहे।
1: तो हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता अभिनव कुमार, गौरव कुमार और प्रणव कुमार। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समडील नवापाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमीला भावसार। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सचित, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वत, कुमारी सानवी और कुमारी हर्षिता।

0: रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने

0: निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मैं हूं आपके साथ रिया प्रकाश। श्रोताओं, फिल्म खिलौना अपने मानसिक स्वास्थ्य और प्रेम पर आधारित अपने शानदार अभिनय, भावनात्मक कहानी और सदाबहार संगीत के लिए जानी जाती है। श्रोताओं, फिल्म की कहानी विजय कमल यानी संजीव कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी प्रेमिका की मौत के सदमे में मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसके परिवार वाले उसे ठीक करने की उम्मीद में एक युवा वेश्या चांद यानी मुमताज को उसकी पत्नी का नाटक करने के लिए घर लाते हैं। विजय धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसे चांद से प्रेम हो जाता है, लेकिन ठीक होते ही विजय कमल चांद को भूल जाता है। इसी बीच ये पता चलता है कि चांद विजय कमल के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर विजय कमल के परिवार वाले चांद को धुतकारते हैं, पर अंत में परिवार वाले उसे अपना लेते हैं।

0: चोर?
1: One, two, three, four.
0: क्या है जिस चोर

गले ए लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है

हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये है शांति नगर सोनीपत से। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव नेहरू चौक पैठन से हमारे साथ जुड़े हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। एसएससीएल कॉलोनी कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता सीमा राव और के राव। श्रोताओं, फिल्म खिलौना गुलशन नंदा की उपन्यास पत्थर के होंठ पर आधारित थी। फिल्म की कहानी को सबसे पहले गुरुदत्त को ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन वो के आसिफ की फिल्म लव और गॉड में बहुत व्यस्त थे और गुरुदत्त के निधन के बाद इसे रोक दिया गया था। फिर फिल्म चंदन बोहरा ने बनाई। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को मुख्य किरदार के लिए चुना गया। फिल्म में जो किरदार मुमताज ने निभाया है उसे उस किरदार के लिए सबसे पहले शर्मिला टैगोर और वहीदा रहमान को चुना गया था।

संदेश आया है फजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विष्णु खेड़ा, लाडली खेड़ा, शालिनी टुआंशी खेड़ा और वाणी खेड़ा। मेरठ कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता दिग्दर्शन और कविता गौड़। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। छत्तीसगढ़ चूरी लाइन मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अफसाफ, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा। धनौरी तिलीवाला उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। श्रोताओं, खिलौना फिल्म की कुल कमाई बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ की हुई थी, जिससे पता चलता है कि फिल्म कितनी सुपरहिट रही होगी। और इस फिल्म में कलाकारों ने जो अभिनय किया है वो काफी सराहनीय था। श्रोताओं, यह फिल्म खिलौना 1963 में बनी तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म का रीमेक था और साथ ही इसे तमिल और मलयालम भाषा में भी बनाया गया है।

इसके साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह, जिस तरह भूल जाती है सुबह गई रात को।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा प्रणालियां ते मजबूत ब्रिक सहयोग दा सदा दित्ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दा कहना है कि कोविड-19 दहशतगर्दी ते अज दी जलवायु घटनावां दे प्रभाव वर्गियां चुनौतियां दा सामना करन लई अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नूं प्रदान प्राप्त दान विच कथित माली बेनेमियां दी अदालत दी निगरानी हेठ जांच दी मंग करन वाली जनहित अर्जी दी तुरंत सुनवाई करन तों इनकार कर दित्ता है। वेनेजुएला च जोरदार भूचाला नाल तबाही, 32 मौतां ते 700 तों वध लोक जख्मी। ते भारत दे दखल तों बाद पैरिस विच चंडीगढ़ दे विरासती फर्नीचर दी नीलामी रोकी गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा

0: भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 7

0: 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, X, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT

0: को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?

0: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
1: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
2: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
0: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
1: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
0: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
3: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।

0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
1: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
2: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
3: जी,
2: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
3: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
2: जी,
3: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
2: जी,
3: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
2: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
3: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
2: युगल और सहभागिता पद्धति
3: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
2: जी,
3: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
3: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
2: हाँ हाँ, बताइए।
3: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
2: प्रश्नोत्तरी पद्धति
3: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
2: अच्छा।
3: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
2: जी,
3: वो बहुत ही शानदार है।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
0: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
2: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
0: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
2: गिजू भाई के अनुसार,
1: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।

0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
1: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमा।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अख्तियार का दिफा किया था। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बैन अक़वामी इश्तराक पर जोर दिया है। भारत और चीन के दरमियान 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते सरहदी तजारत फिर शुरू होगी। 26 तजारती पासिस जारी किए गए हैं। ब्रिक्स 2026 की भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग गुरुग्राम में शुरू हो गई है। वेनेजुएला में ये के बाद दिगरे आए दो जजरों में बहुत से मकानात मुनहदिम हो गए हैं। हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। और फीफा आलमी कप में मॉन्टेरे में जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा कर पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। खबरें तफसील से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खल्फशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आइन की दफा 352 के तहत मुल्क में एक कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरतहाल के सबब किया गया था क्योंकि उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत पर सवाल उठ रहे थे। इसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और सरकारी अथॉरिटी पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इसके बाद मुख्तलिफ आईनी तहफ़ुज़ात मुअत्तल कर दिए गए थे। शहरियों को उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई के करने के हुकूक से महरूम कर दिया गया था। यहाँ तक के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आजादी के तहफ्फुज का एक कानूनी अदारा है। इस मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी और वजीर आजम और लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जांच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अख्तियार के दिफा में साबित कदम रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी के मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा है कि इमरजेंसी आइन पर एक बराह रास्त हमला था।

0: कहा है कि वो अमरीका के साथ ईरान के इब्तदाई अमन मुआहदे के तहत ईरान में मुआयने की कार्रवाई अंजाम देगा। जापान में नमानिगारों से बातचीत करते हुए आईएईए के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि वो बहुत जल्द ईरान में मुआयने के सिलसिले में तारीखें, तरीक़ाकार, मकामात और दीगर उमूर पर काम करेंगे। फीफा आलमी कप में ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, मेक्सिको और मराकश आज अपने अपने मुतल्लिका मैच जीतकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। जनूबी अफ्रीका आज सुबह मॉन्टेरे में जनूबी कोरिया से एक गोल से जीत हासिल करने के बाद पहली मर्तबा नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार का दिफा किया था। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बलकमामी इश्तराक पर जोर दिया है। भारत और चीन के दरमियान 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख के दर्रे के रास्ते सरहदी तजारत फिर शुरू होगी। 26 तजारती पासेज जारी किए गए हैं। ब्रिक्स 2026 की भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग गुरुग्राम में शुरू हो गई है। वेनेजुएला में एक बार दिगरे आए दो जजरों में बहुत से मकानात मुनहदिम हो गए हैं। हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। और फीफा आलमी कप में मॉन्टेरे में जनूबी अफ्रीका जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर पहली मर्तबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी गदारी के तर किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हुसैन अदर और हमनवा नौहा खानी कर रहे हैं।

0: रज़िया अभी नवा खानी कर रही थी। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। आज के अंदाज़े नज़र प्रोग्राम का मौजू है मुहर्रम का पैगाम इंसानियत के नाम। सामीन, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, प्रोग्राम अंदाज़े नज़र के तहत आज मुहर्रम का पैगाम इंसानियत के नाम के मौजू पर हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौलाना मोहम्मद एजाज साहब, सदर ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत तशरीफ फरमा है। आप दोनों हजरात का हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है।
1: शुक्रिया।
0: और साथ ही हम अपने सामईन के लिए जानना चाहेंगे कि मुहर्रम क्या क्या पैगाम है। सबसे पहले मौलाना मोहम्मद एजाज साहब अपने तासुरात बयान करें।
2: देखिए, 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में रूनुमा होने वाला दर्दाखेज वाकया सिर्फ जालिमों के खिलाफ मजलूमों के लिए जंग नहीं है, या सिर्फ जाविरों के खिलाफ मजबूरों का एहतजाज नहीं है, या हाकिमों के मुकाबले में महकूमों की हिम्मत मर्दाना का इजहार नहीं है। इस जंग को ताकतवर और कमजोरों के दरमियान खुरेजे से भी तावीर करना करीन इंसाफ नहीं, बल्कि उसमें आज़ादी की तड़प और गुलामी के खिलाफ नफरत का आलमी ऐलान भी है। इसमें जमहूरियत की बकाव तहफ़ का ऐलान और आमनीत और शहनशाहियत के खिलाफ ऐलान जंग और करबला के बेआबो गया और चटियल मैदान में लड़ी जाने वाली इस्लामी तारीख की ऐसी जंग है जिसकी मानवियत और इफादियत में

0: तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो कैसा था?
1: बिल्कुल मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहां पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है। अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे, तो जहां जहां पे यूनिट रही, जहां जहां पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहां वहां पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे। जी, तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीजों से। अच्छा। विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहां जहां से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में, तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर।
0: तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी, देयर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और हम बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 01123421085, 2342108 5।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सिक्योरिटेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाए, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई। जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे। सो एक बार एक तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसा आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वाज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को, उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी, ऐसे बच्चों

0: स्कूल में लाके उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे है,
1: पूरा लाइफस्टाइल
0: जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टेब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं, फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई शुड वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वाज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग, और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही इसमें, कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना वो सेंस सिखाना, वो इनग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है, फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज कर, 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस।
0: यही आपके बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आंख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना, कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां आएगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे।
0: जी, जी,
1: तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, ये सब काम उसमें शामिल थे, जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया
0: जी।
1: तो वो जो मोमेंट था,
0: देखिए साहब कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा
1: जी।
0: हाँ, ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने इसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वाज एक्चुअली अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
0: जी,
1: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद

0: है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है। तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छा करते रहना है।
1: बिल्कुल जी। सर एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है, जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5वीं में हैं
1: जी,
0: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन। और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं, किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती है जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है। पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक आदर्श डाले आते हैं, जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: जाएगा। बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस, अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों की अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे की जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पे जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
0: या जो पास आउट हो चुके हैं,
1: हाँ,
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल
0: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। जो हमने आपकी फीलिंग से पूछी और हम फीलिंग सब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ अंजलि दो अंजलि लोद फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेज आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 011-2342-1085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें की जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम है, प्लस जो हमारे 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब

0: बिल्कुल ये कि एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर. मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में.
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो
1: जी. बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे. इन चार सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस. बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने. सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे. तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है.
0: ओके.
1: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में.
0: ओके.
1: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है.
0: अच्छा.
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा. ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी,
1: करी
0: जी.
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी. तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है. तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं.
0: okay.
1: जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं. तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है. और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं. तो ये चूज कर सकते हैं. ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री. ऑटोनोमस है और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है. और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है.
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं. देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना प्राइमरी. अच्छा. होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है. तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं. जहां
0: अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझें, आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो बता रहे हैं आप
1: संस्थान में? जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है.
0: अच्छा.
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए.
0: okay.
1: जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई.
0: अच्छा.
1: ट्रीटमेंट्स हो गए.
0: यस,
1: जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए.
0: अच्छा.
1: तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे.
0: अच्छा.
1: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है. तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहां पे. डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं. एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ. सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर.
0: ओके.
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि भाई जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्योर करने में, ना वो बहुत रिमार्केबल होगा.
0: सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट्स आपने बताए उनको और बेहतर.
1: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे. सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर and I had all the people who were under me and I could use them at my own disposal. यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग competencies, capabilities और अलग अलग environment से आती है. तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं. तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं. यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे, जंगल में एक तरीके से, जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहां पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे. तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं. बट द फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग.
0: जी. तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं. बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू. तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप.
0: तो बिल्कुल, वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए. तो आप

0: थमते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते
1: फिर
0: हैं,
1: आगे बढ़ते हैं
0: सर। इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट इसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, और उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
0: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट जी जी, और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
1: हाँ,
0: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
1: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
0: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
1: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैग कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो उस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
1: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चले, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
0: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
1: जीवन शैली है
0: वो एक लाइफ
1: स्टाइल बिल्कुल अलग है
0: और बहुत ही स्पेशल है,
1: मैं समझता
0: हूँ। तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो
1: जी।
0: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
1: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रांग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, पर हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए, नेवी में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो
0: दुश्वार है।
1: एग्जैक्टली।
0: सर एक चीज यहाँ भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिसाब बने, जहां आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं,

0: क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
1: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
0: अच्छा,
1: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है।
0: अच्छा,
1: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी। एसएसबी आपने पास कर लिया तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं।
0: कम से कम उनके अंदर वो चीज,
1: राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड, दैट स्पिरिट
0: अपहोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज में बरकरार रहनी चाहिए, और उसके अंदर वो जोर से जज्बा, और देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हाँ भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है, और उस पर जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सर, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें।
1: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
0: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक। आप भी एंजॉय करें, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे

0: हम जानना चाहेंगे कि पीजे लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब एआई का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब एआई का बहुत यूज हो रहा है, तो पीजे किस तरीके से एआई के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप एआई से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: एआई हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें, एआई हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में एआई विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने एमआरआई करा, एमआरआई को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हां, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 एआई के जो एआई का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो पीजीआई में बहुत बड़े स्तर पे अभी एआई को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है
0: जी।
1: आई एम श्योर आने वाले टाइम पे एआई से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। एआई विल, अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि एआई बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि एआई का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि एआई के माध्यम से, एआई के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, एआई पर हमने बात की और एआई तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में। हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम एनटीए कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशन की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को अपियर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद। जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी, आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फियरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। I give respect from bottom of my heart, myself, Shankar Lord, from Gomo district, Dhanbad, Jharkhand. Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.
1: Bharat Mata ki Jai.
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहां भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे, यही बच्चे जो होते हैं फिर जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है।

0: थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
1: जी जी, देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट

0: इनका फोन का एडिक्शन है, ये लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से उनको लिया जा रहा है. तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
1: जी.
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे, या गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उंगली हिल रही है बस खाली.
1: वाला था सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे?
0: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है. तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज. सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है.
1: बिल्कुल.
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज शॉर्ट तो है ही. जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है.
1: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है
0: जी, जी.
1: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता
0: जी.
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है. हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी है. देखिए साहब, आप बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है. तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट यस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग. ये बहुत आवश्यक है,
1: ये बहुत जरूरी है
0: जी.
1: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए.
1: अच्छा.
0: किस तरीके से दूर रहना है, देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है. तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि
1: अच्छा.
0: भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना.
1: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट,
0: यस अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है. आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीजों को लेके फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इस चीजों से. प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी ईविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है.
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है.
0: तो
1: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
0: देखिए कुछ चीजें
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही है
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही है, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है. प्रॉब्ली वी विल कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों
1: जी. तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही. आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है. और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की.
0: तो मच,
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सर
1: आने के लिए
0: जी.
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे. कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.

0: सामिन अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से संदेश टू सोल्जर समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। सामिन अब से लेकर रात के 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज, मीडियम वेव 1584 किलो हर्ट्ज, FM 100.1 MHz के अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। मीडियम वेव तुर्कियाना यशुश बिन अजबी किलो हर्ट्स, मीडियम वेव स्नोचिकना गब्याना यशुश बिन अजबी किलो हर्ट्स, FM 100.1 MHz चंगाची मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR का आचास आकाशवाणी कारगिल नाजरिनुत Waxpot sudaga sonsuk dering ejak pobres put junil zeng ejur saga dering prachupayot pi programun jubes la kure nga changya inti dunuk lepsiot nga chi juna salam po prodmachan sonshi. Sagbatis nalla do aya program sadaqat la gozubbe di programi reqsik ngen mazat irsak maqorani tilawat na tarjuma molkan poin qari shakir qasimina mehrajud din.
1: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते।

तुम तो सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से गायबाना डरे, सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो।

बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौह महफूज में लिख रखा है।

यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तकवियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं।

वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो, और अल्लाह ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो।

दर सकते सदाकत प्रोग्राम निपिन मीडियम वेविका चेस आकाशवाणी कारगिलिकना सिरिन्युत कसता दिरिंग प्रचुपी प्रोग्राम सिरपोला मजद खबर निवास पदुसुखा पूर्गी खबर उन प्रचुक चासीन आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी अंग्रेजी दोना उर्दू नो खबर उन प्रचुक चासीन तो सत्रुइका दोना तो सत्रग्यात नमीने एक निशुंगिस नगाइका आकाशवाणी सरनगेरी कना उर्दू नो खबर उन्ना तब्सरा रिले बचासीन तो सत उर्दू नमीने एक निशुंगिसिका

जबकि अदालत जी मुकदमा लसीर तांसुयों में वासन यानु समाहत बचा इंजरन अयोध्या राम मंदिर पे आतिया उन इसको लसी सीसीटीवी फुटेज डिजिटल जोस्ते के तांसखन पेनियों सागे रिकार्ड उन दोनों एलोक्सो सुबूत उन सास रोनलुक से जोक से खास को उन तांस दियों इनमें दरे सबको पुरी खबर उन आइजन शेष दबोस ये जो खुदा नर्स सामानी फ़ख्रियां।

0: Dari sakpayantes purgi khabarun langya ninut pin medium wewika ngajasa kashwani kargili kana sirinut. Waks putusut akhani minir sumcu sonsuk kasata program ngin mazet rdeluksi hago.
1: साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथियों, हम प्रायः देखते हैं और कई बार हमारे घरों में चर्चा भी होती है, हम एक दूसरे से सुनते भी रहते हैं कि भाई मेरा रक्तचाप बढ़ा हुआ है, या फला व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ा हुआ है, या मेरा ब्लड प्रेशर लो है। तो ये उच्च रक्तचाप, ये निम्न रक्तचाप क्या है, इसका क्या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके संदर्भ में जानकारी लेते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनीष वाजपेयी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। ऐसा होता है कि जिस प्रकार से हमारे घर में एक पानी का पंप लगा होता है जो कि पानी को आपके वाटर टैंक तक ले जाता है, उसी प्रकार से हमारा हृदय एक पंप है जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है
1: जी।
2: ये हर व्यक्ति में एक नॉर्मल प्रेशर से ये रक्त का प्रवाह होता रहता है, और हार्ट जिस प्रेशर से नॉर्मली इस ब्लड को शरीर में पंप करता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः ये नॉर्मल व्यक्ति में 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और निम्न जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो 80 mm ऑफ HG होना चाहिए। परंतु साधारणतः देखा गया है कि उम्र के साथ या आजकल की जिस प्रकार की हमारी जीवन शैली हो गई है
1: जी,
2: उसके चलते बहुत से लोगों में ये रक्तचाप बढ़ जाता है
1: जी,
2: और ये हाई प्रेशर से आने लगता है। अब हाई प्रेशर के आने से आप कहेंगे कि साहब पंप अगर अच्छे प्रेशर से फेंक रहा है
1: जी,
2: तो हमारे शरीर में ज्यादा रक्त का प्रवाह होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये हार्ट का पंप हो रहा है ये अगेंस्ट द वेसल्स हो रहा है, और वो वेसल्स में अगर किसी प्रकार का अवरोध है या ऑब्स्ट्रक्शन है या ब्लॉकेज है, तो इस वजह से इस पंप को ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। उस ज्यादा कार्य करने की वजह से जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है, इसी को हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये हाइपरटेंशन एक बहुत ही विकराल समस्या है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में
1: जी,
2: अब हमारी भारतवर्ष में लगभग 33% लोग इस हाइपरटेंशन बीमारी से ग्रसित हैं। आने वाले समय में अगर हम अभी नहीं चेते तो और भी जनसंख्या इससे प्रभावित हो जाएगी। इसके लिए लाइफस्टाइल हमारी बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जैसे हम अपने शरीर के वजन को कंट्रोल में रखें, अपने खान पान को नियमित रखें, संतुलित भोजन लें, खाने में ऐसी चीजें लें जिनमें सॉल्ट की मात्रा कम हो
1: जी।
2: नमक, चटनी, अचार, पापड़, ये सॉल्ट हमारे लिए एक एडिटिव है, लेकिन हमारे देश में सॉल्ट या नमक ऊपर से ही ऐड करना एक फैशन है और ये बहुत ही कुरीति है। तो सॉल्ट का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि सॉल्ट अगर हम खाने में लेंगे तो सॉल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी फ्लूइड को रिटेन करती है
1: जी, जी।
2: हमारी किडनी फ्लूइड को रिटेन करेगी, और हमारी किडनी अगर फ्लूइड को रिटेन कर रही है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए जो जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको पहली चीजें बताई जाती है कि आप बिना नमक का भोजन करें, सादा भोजन करें। लेकिन अगर हम पहले से ही अपने खाने में डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, हम नमक का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल इस स्थिति से बच सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति से
1: जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते अगर हम अपने श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहें इसके संदर्भ में, तो क्या बताना चाहेंगे?
2: हाँ, मेरा यही कहना है कि हम अपनी दिनचर्या को संतुलित करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनको कभी ब्लड प्रेशर का उनका बढ़ा हुआ आया है, वो अगर अपने घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकें, एक ऐसी छोटी सी मशीन खरीद लें, एनोराइड, जो डिजिटल बीपी का नाप सके, घर का ब्लड प्रेशर का नापें, और ऐसे लोग भी जिनको कोई दवाई चल रही है ब्लड प्रेशर की, वो भी अगर अपना ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करते रहेंगे और स्वयं मॉनिटर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि वो आगे आने वाले किसी भी खतरे जो किडनी को, उनकी आंख को या हार्ट को अफेक्ट कर सकती है
1: जी,
2: उसको मॉनिटर करते रहें।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना डॉक्टर साहब से कि भाई यदि आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं और नियमित तौर पर जो भोजन है, पौष्टिक भोजन है, वो लेते हैं, वॉक करने जाते हैं, और जो क्रियाकलाप है वो सामान्यतया

0: करते हैं तो आप अपने जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है इससे निजात पा सकते हैं या ये समस्या आपके पास आएगी ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपने हमें इसके विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: दर्शक पयंतेस प्रोग्राम यनिनुत पिनर देलुक्सी हगो मीडियम वेवी कांगचेस आकाशवाणी कारगिली कना सिरिनुत वक्स पतुसो तगाने मिनेर सुमचो सोगासों सुक कसता मर्ची गन मजद काचो इस्पेंडियार खानी कता
3: सलाम।

0: की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर गट रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दरे सपाइंटेस नोहर एक निन्यूत पिन मीडियम वेव का अचेस आकाशवाणी कारगिली का नाजर निन्यूत वक्स पोतुस त्रुक चेंदो कसत आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी नंगरेसी खबरों न रिलेबे त रिलेला डंग बाजेत

समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्य

0: एंजाइटी सचिन जेनुर और नतीर गल भी नमजा मसलन आज से पांच साल पहले दस साल पहले मैट्रिक पास सचना यरा मसलन गा जगह चिके ची ची परेशानी मुश्किल चौं सतना दक्षन दे बार बार संभाल जो बार बार दत्पंगा दे चने दू बस पिंसुप ने दू सचिन मिंसुप दे चना दू चे मस पिंसुप सरे पास ती बार मंगमो संबता डिप्रेशन सचिन जेनुरा छना दी डिप्रेशन पनमो यरेस मोस की दी डिप्रेशन इंगता अलामा तुंची बसे पता छो गा मिची गा गा फ्री गा या अच्छा स्ना यरेस मो जवान कुने नजर जवान सा मेन नमो दू गा उमरी एशिया यतना डिप्रेशन मन कॉमन इन छिमी सा ना डिप्रेशन यो चीन सुनचे आना हो चीन और जवान आना हो चीन प्रोक्स में कम हो चीन प्रोक्स द कुआं दी संभव मतलब मैच्योर मामी मशहूर सा ना कुआं दी जर्मो मामी कौन से में बुआ
1: निका सर सर ची ची स्ट्रोले का ती कर गिलंग दो सोस जर्मो ये नगता थों इन दो कि डिप्रेशन या स्ट्रेस ये वजह का मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम सों से दो जर्मो नगा ती कर गिलंग थों इन दो
0: अच्छा क्लिनिकली जैसे कि नतीला पेशेंट चिकना यंग मन मसलन पेशेंट चिक स्टेट ना या चाहे मसलन हॉस्पिटल चा इन बाहर इस क्लिनिक चिका इन सब सेंटर चिका इन गा कसुमी नती ओपीडी पेशेंट चियो ना मैक्सिमम पो ज्यादातर पोता डिप्रेशन केस मोमो थों जिंजु मोमो यो नु नती कर गेलो बिल्कुल बाकी दुनिया न चोस लबल की जगह खची बस खेमो पिचांस तो नची हिसाब के ऑब्जर्वेशन दो यो नु की मन आज काफी तादा त्यांग दी डिप्रेशन न एंजाइटी मुब्तला खनी मरीज मोमो यो नु शायद नची संबे हिसाब का मति मुश्किलात खचिक मामो तिंचु जैसे कि दक्षन अनएम्प्लॉयमेंट जवान उन्यंग या मसलन यंग यंग मन सक जिक जबरदस्त शो कारण चिचिक दक्षन गता नंग उन्यंग मन बिजी सो आता अमा सक रंगी रोजगारी पीछे मसलन डे टू डे यारी ड्यूटी पीछे या मसलन ज्यादा से ज्यादा गजो कमाई बुक ज्यादा से ज्यादा बाहर टाइम स्पेंड बस ना अति फ्रोन नेम्बो आता अमा निज या आंटी योत नती मसलन अपो अपी योत ना दोन नेम्बो फ्रोन नी तालुकात पोर फ्रोन नेम्बो दुख से ना संग फ्रोन इज ट्वीट टचिक मोबाइल टचिक सुमा सुन सुन इंटरेक्शन पो कम योत पना दे वजह का खुआ इमोशनल हेल्थ पो इमोशनली खुआ चस्पा चमच सुनचे ना बच्चे ना खुआ इनकरेज चमच बच्चे ना नेम्बो टाइम बिताए बस स्पेरा तां दुख जाओ नती जर बेंडो जूस नाला रूम शी तां दुख पात ना चस स्टोरी टेलिंग नता आदा दे पिन तो दक्षण दोन गमा स्टोर चाना गाला शिक जंजोज ना नेम्बो स्पेरा तां दुख जाओ टाइम स्पेंड बचाओ खुसूसन एक दो घंटा हर दिन नता हम अपन नेम्बो चिक चिक दुख दर्द स्पेरा तां दुख चस इमोशनल बॉन्डिंग को कौन तत्काल नमो बड़े चाचे सु ना दक्षण दे टाइम पे मना स्टोर बना दे टाइम पे मेट पना मथो बना अताउन अमान जंजो सुन सुन सुन यंबो मामू मालूस पना दे अनु को दिक्कत हो से दी डिप्रेशन ना दिन सा मामू चाचे सु और दिन अलामत पेरेस ना लंगा टीस अलामत पंगता दो सुख से के पता चाचे की दी डिप्रेशन इज दर मो योंखन मिंग अति स्पेरे का उदास दुख जर दे उदास दुख यानी कि खो मन से उदास लुशिन सुजु खुल्टो चन लुशा तो खुल्टो चन पका चुआ इन सुज बना मसलन खुल्टो चिकचिक नगता लो शिक्षा ना नुकसान चियों मना मसलन अति शिकन रुक पे रा शस्कन चीगा रा ना जंजो शिची ची गल ना माली नुकसान चियों ना गेर सीफियस सा खुल्टो चचिन बुदो नॉर्मल इन लेकिन दी खुल्टो चकन पो हमेशा लुशिन सु खो खुश छे मसलन आज क्या एग्जाम चेनो पास सो से रिजल्ट पो पास उतना गला परसेंटेज हो से उतना या खो माली फायदे छे ना संख खुश छे जमन जो मचा ना दे खुश छे जगह का को मसलन अति ई चीज हो मत बस्तों चीज हो ना खुशी मकाम चीज हो दे जगह का जंजो स खुश हो दे पना गा मिक दे तन खुश का तो मलूज ना खो डिप्रेशन रुत पे अलामत इन यानी ज्यादातर खो परसिस्टेंट और परवेसिव सैडनेस जशिन यानी कि ज्यादातर खो खुटो मसलन खुशी जगह का खुशी मकाम चीज का को खुटे लुशा जदुग लुशा और दूसरा खुआ इंटरेस्ट जरूर गेरा पढ़ाई खो स्टूडेंट ना खुरी पढ़ाई हम इंटरेस्ट हो जमे चुक हाउस वाइफ इन ना खुई ना खुरी डेली बखन लस पे खुआ शोक यानी कि इंटरेस्ट खुआ स्टोरचेन चुक खुए शोक लुशमेन चुक और लस बखन जी ना खुआ ड्यूटी का छसी ड्यूटी का सोसन लस बस यो जमे चुक इंटरेस्ट पो खत्म छचा खुए अलामत चिक चिकिन यंग चिक चिक जेनु यरा गिल्ट फील छचिन गा लशी फियंग खोरंग ना खोरेस खोना और मन मत अपचा नरेस बस सोसन चुक नरंग बत कसम दिन चुक ना दर्द में खन इन चुक जरे गा मतलब परेशानी क्या गा नाकामी योदना गा फेलियर योदना गा नुकसान इची योदना खोरेस रंग दे मलोइस बस ना नरी वजह का सोस जरे काम खुरी का गिल्ट फील छ चुक छाना दु चिक चिन बु यंग चिक चिक मन अलामत चिक चिक मोस्ट कॉमन दी डिप्रेशन योद कन पेशेंट ने दो चिनेरा स्नातो इंसान गतंग नेलसन लासे नंग ना बिंग चना गा मी गिना फ्रेश सों सों जिन यानी गाला शिकबा चना एक शोक ने बो एक्टिव ने बो एनर्जी ने बो खुस लस्त बा क्यूचिन क्वा लेकिन दे

0: डिप्रेशन ना बाकी दिमागी जर्मो गम भी पिया दक्षण अच्छे से अच्छा दवाई युत छाना साइकेट्रिस ला रुजू बचाओ बिल्कुल जरूरी इन वक्त का बार गोशिन ताकि खुआ जिंदगी अनुमामी नुकसान चिचा मामा खुआ खुरी जिंदगी लाइफ पो एंजॉय बाग हो न्यानुक और दियानुक मुख्तलिफ कस्म इसमान मामो चिन गता आसमान पो दक्षा जरूरी जरूरी मेन कुरान साइकेट्रिस इस दांस में यरान आज असली आज मन हटी जैसों से कौन से जेज मने उचमें और जेन लुबु दियानु काउंसलिंग पुना स्मन पो निस्का का तो कोलना बेहतर दे रिजल्ट होते हैं ना दो सब उसे गल बन जाएं
1: कैसा सर कैसा निगर यार इस नती प्रोग्राम यान खानूं ला यादो चुक स्पेशल ची दुक्त कोई इनागा दोन लगा चुक फ्रिंची का प्रोजेक्ट
0: सब बच्चे बुंग अतेस नल जैस की नती स्नापा से नमजी चीज खचिर गला एट पिन दोन अतेस यान लोक से दोनी का अमल बच्चों मन जरूरी दो
1: कैसा सर
0: दक्षिण अतेस हद से ज्यादा 24 घंटा और

by the way yodna dolang ha alak yang ta target chi basi pok fura yang alak intervention chi bachi pokhuri be yang alak extra zan chi chok chi ta chi nga cha yara severe case on la extra zan chi za chi yot da so severely and weight pula yot yara zan na da nga chi growth monitoring pe ka pata bachin free status bu ga sare dukh health koi koi height hisab a koi weight ta chi yara koi age hisab a koi weight ta chi koi age hisab a koi height ta chi yara mati dir aksar shed de stunting wagera yana chunche chunche lu se jer सुनचे लुशस पो दिया गजा शिंग आता अक्सर मिस दू जरे कि सुनचे लुशस पो आचा पहाड़ी मीन आता लद्दाखी इन आता सुनचे लुशिन नती हाइट बुद लेकिन डब्ल्यूएचओ नॉर्म से हिसाब आया नची मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने नॉर्म से हिसाब ये बिल्कुल भी मतलब है नहीं ये सही नहीं है जरा नती प्रूनी प्रूनी सेहत पो कोई न्यूट्रिशन पे डिपेंड खोज जान गचो हजे खोज जान गा कसम उनजे और खास कर सुनचे आया ना सुनचे फ्रूनला खास कर सुनचे फ्रूनला दे जरा नती ग्रोथ स्टेज पे तेज हो जीरो के नाता से छह साल सकवा मन जबरदस्त ग्रोथ देन उन्होंने सब पसंद खेमो ग्रोथ पुखा दो साल है छे 18 साल सकवा आता कोई हाइट बड़े छे छिन फ्रोनी देर गैप देना हाइट पे कोई खेलची नहीं ना बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे कोई छेन लोशन दूसो यारा अति जाने स्कोर ला जानो अति मतलब तमाम सेंटर के थ्रू हर 690 सेंटर पूरा डिस्ट्रिक्ट में आयो देना कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ हमारे सेंटर्स नहीं है मोहल्ला मोहल्ला आंगनबाड़ी सेंटर्स हो टोटल अचा 11-12 हजार बेनिफिशियरी हो हर महीने कोई रियल टाइम दिखा चाहूँ दुख से मॉनिटरिंग बात है ट्रैकिंग बात कि गाँव का सारे लिप्स गाँव सेहत का सारे लिप्स इंडिकेटर सब पैरामीटर सब अच्छे दूध चेक बिंदु पर देना जाना चाहे दे हिसाब आकवा रन जचास पो यम्बो यम्बो दो नम्बो प्री स्कूलिंग पो देना सिर्फ गाँव सेहत पे का फोकस मैं दिया नुक आई सीरियस है नुक फिर डेवलपमेंटल डोमेन पे ना हो जैसे कि गाँची यार दिया नुक प्री स्कूल पोषण भी पढ़ाई भी जरिए इंपॉर्टेंट स्कीम चीज यम्बो डोले यम्बो यम्बो खुराक ना यम्बो यम्बो कहीं डेवलपमेंटल डोमेन सारा इम्प्रूव अच्छा जैसे कि यार कोई स्पेरा था जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जरे यो नती डोमेन पहनो या एस्थेटिक कल्चरल यो यार फिजिकल एक्टिविटीज बचुचा दिन सम्मान जरूरी दो अक्सर खास कर यार जरूरी दू छेनुक मेन पो नती फोन सा अक्सर मैंने इंडोर मामो लुसित देखना या मोबाइल एडिक्शन जी या मामी लुसित फिजिकल एक्टिविटीज कम छेद यार निमे सन लाइट एन खूँ कम लुसित छाना देफ यंग अच्छी पूरा अलग यंग क्यूरिकुलम एक्टिविटीज जलता नहीं होती यार चोस मतलब गा का एक्सरसाइज बचिन आउटडोर नाम खिरचिन जन नाम ताचिन मतलब प्ले बेस्ड है पाया लर्निंग बेस्ड है कौन अच्छी दू बचमिन की शोभी खुरे साफ से ताचमिन अक्सर मैं तो कन्फ्यूजन छेनू अति देर अक्सर लद्दाख अच्छी यार की फूनला शोभू खतरनाक चिफिंग से साफ ताम हो छाना असली का यार अच्छे कौन ह्यांसपा ह्यांसपा साफ ताचिन यार एक्टिविटी सब चोस और चेजर मैंने सुनते हुआ कोई चिकना मन आजू पहुंचे यार को दस्ती बोर छचिन फोकस पर मांगो लुशा मिन यार सुनते हो चिंदे ड्यूरेशन पर फुआ बोर छचिन बोर छ जरे ना गाचे पा 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा जो कम कम ड्यूरेशन है ना एक्टिविटीज में चेंज वैसे गाचे पा क्यों रखना एक्टिविटीज से आउटडोर होना जरूरी सो यार एक्टिविटीज सब दोन सब वहाँ बचू चिन नेचर ने वो इंटरेक्शन बे दोन सब यार स्पेरा था या सोशली वेलबींग जरे सोशली मीन एम वो थुक स्पेरा था चस बाहरी एनवायरमेंट ने वो गचो एक्सपोजर को नंबो गचो इंटरेक्टिव बचन जरे दोन सारे गाचे पॉइंट क्यों रिकलम चोसियो में दिया यहाँ इंपॉर्टेंट चीज सिद्धू यो दिया गाची दिया नो यहाँ इंपॉर्टेंट स्कीम ची गाची प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जरे दया नो गचा दो मेटर्निटी बेनिफिट इन यार पहला फूला 5,000 तामत सेकंड बोमोस के ना तो 5-6 हजार रुपए थो बत पहला फ्रू चाहे बुसास केस चाहे बोमोस केस मेटर्निटी बेनिफिट वो खा 5,000 रुपए यार थोप चीन दूला रजिस्ट्रेशन बॉक्स पर लेकिन गाती अक्सर दिया कल्चरल बैरियर यूथ सोसाइटी की मतलब गाता चाहे प्रेगनेंट हूँ चाहे कंसीव हूँ संग से जाकर दे मतलब संग से जाकर गाची यहाँ रजिस्ट्रेशन ही प्रोसेस की खुरा की मतलब इतने टाइम में रजिस्टर होना चाहिए टाइम चेनू फ्रेम चेनू को रजिस्टर छाउस छा दे फिया चिकना कौन जब प्रेगनेंट हूँ अच्छी बेनिफिशियरीज इन प्रेगनेंट वुमेन अच्छी बेनिफिशियरीज इन छा कौन मेटर्निटी बेनिफिट पुणे यम्बो चिक दोनों यम्बो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पहुँचवा अच्छी सेंटर एक ना सप्लाई छे यार देर गया अपना डिलीवरी सो डिलीवरी गया अपना लैक्टेटिंग मदर पहुंच 6 महीना सब पंग अच्छी देर अमाउ लॉन्ग जन थोप चिंदे उन्होंने यार चाहे कोई बाकी वेट गेन सक चेक बिंदु चिंदे या ए एन सी बस हो बस हो आयरन फोलिक एसिड जो सो मजो सो मेन प्रॉब्लम चिंगा था सब बस आंधी का लता का दाव छेनु की आयरन ही कमी सोक्षिक एनेमिक एनेमिक खारिक मन मामिक रमेत पैतम जुनसी आयरनमिक फिर भी एनेमिक सोक्षित खराक कमी सोक्षित चाहे अक्सर आयरन फोलिक एसिड उन या दे टेबलेट उन जमा जाना या आयरन रिच फूड मजाना दोन सारे क्या गाचे कौन काउंसिलिंग देख या कौन एडवाइस देख यो दोन अंगाती देर खान सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होना प्रोवाइड बिंदु पर दो जरूरी दो मेटर्निटी बेनिफिट को यार दो अवेल बचा दो रुकैस बसें तमाम अंगाती दो ना यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें गाचा दिया दसा गाचे जाना सक्षम आंगनबाड़ी जिन चीज मिशन पोषण है यंग इंपॉर्टेंट स्कीम चिकन कंपोनेंट चिकन दरी यार दिया नुक

0: chira ha berer chi yong et king at sang se jare tang chana nga ti achin mone sa diuni kana fan khelen tuk sam na ka to sam mahine an khon register ba goshin ya khon sang se jare se gor na ka to khon de benefits po fan ki thop chi na ya men
1: odu da sa du chen mam de yang achi de an time frame chi de ran sal gane ek sal sa pa ya der sal sa pe मैंने कह रहा दी टाइम फ्रेम ची तो मैंने सी ऑनलाइन दरें ना सा ऑनलाइन रजिस्टर छात ऑनलाइन रजिस्टर छाना पोर्टल पे क्या मतलब दो साल से ना फ्रूस केस बिन जरना का तो देरिंग कोई मैटरनिटी बेनिफिट बताऊं मैंने चाहूं फायदे की मसूद दो बिल्कुल पोर्टल पे क्या एक्सेप्ट बाबी नो यार आपको एक्सेप्ट मबाना ना चाहूं कोई मैटरनिटी बेनिफिट बताऊं हमारे इसलिए टाइमली यार सिर्फ 5,000 या 6,000 रुपया चलो एक वो गवर्नमेंट तरफ ने बेनिफिट है अच्छा है और दे मोइन दोनों यंबो यंबो कोई यंग चीज जो दिया रहा चिकना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पोषण को तांचा सूं आयरन फोलिक एसिड को तांचा सूं कोई वेट सक ना चेक चेक बचा सूं दोनों यंबो कोई एएनसी सक चक छेन में दो ताचा सूं यंग चांग कंप्लीशन मिंदु आयोत ने का तो दो रेफर बसे को काउंसलिंग बसे ना था टाइम यूथ पिका पहला कुरा वक्स के नगाते एहतियात बसे बचस पर जरूरी है मन जरूरी दुगिया रहा छाना दसा गती रहा दियंग यंग इंपॉर्टेंट चीज दो दूंगा दो सौ गती कल्चर पहनू सुनते फ्रू चौक कैसे रही अपना मतलब छह महीने रही अपना चलो छह महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरे गाची मैंने बिल्कुल सागर जैसे इनकी पूरा ब्रेस्ट फीडिंग बचू द हमें ओरिजिन को ताँचू देर गया अपना कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पहनू गया ना अलग अलग युद्ध पास ना खुआ प्यूरी टाइप में चोचा देर तीन ना खुआ यारा गाते मैश टाइप के चोचा दोनों सब चोसे रिया अपना अलग अलग यंग खुआ वैरायटी ऑफ फूड जगचा ताकि कोई बिहेवियर पुंगाते चेंज बचें सुनते फ्री तब सच चीज नू गाती देर यारा सुनते फ्रू अक्सर ओरिजिन न फेक स्कूल ठीक है ओरिजिन न फे बढ़िया है ओरिजिन न फे स्कूल ताँचा या चा स्कूल ताँचा मगर अक्सर अति दो तीन साल से आपको कंटिन्यू जाना चा स्कूल पूछा जाए चा स्कूल पूछा जा पाना कोई टेस्ट डेवलपमेंट मसूँ यार कोई बिहेवियर भी चेंज मसूँ और गैप नहीं बाकी जनजस्ती हूँ यार दू मैंने यहाँ छो इम्पैक्ट छे छो छाना बाकी आइटम खचिक जस्ती मांगा ना चाहना बैलेंस मसूँ खुआ खुआ जन को बैलेंस है कि मसूँ खुआ सुनमा ता मरगोस खुआ दाला ता मरगोस खुआ श्याम ता मरगोस या शाह जचा मैं ना बाकी यहाँ प्रोटीन दाल रिक्स जो सोयाबीन हो दोन सक मतलब एक वैरायटी ऑफ फूड था मना कम से कम प्रोटीन चिक मिनरल चिक बैलेंस डाइट चिक खुआ छा छा दो इम्पोर्टेंट दू यार दो लाख कम से कम सब चिक्स ना खमा ना बाश तो नची लेवल का हर जगह नचे सेक्टर लेवल इवन मोहल्ला लेवल के ना डिस्ट्रिक्ट लेवल सब दी हर प्रोग्राम दैन हर जगह सुन से खुआ दिया अवेयरनेस था पब्लिक ने बुतुक पर दैन अति लोकल पी आर आई मेंबर्स सब या अति काउंसिल लीडर सब से जेर छुपा कसम बिहेवियर को चेंज भी
0: बैलेंस डाइट मान खाचन सो सर छनंग अति दी हा पोषण अभियान स्कीम तहत गचुक डाइट हा बैलेंस डाइट थप छि फिला गचुक जन रियो चि रियो दो चि मोलचा
1: नचि दे नुना याना मिनिस्ट्री नॉर्म्स हिसाब मतलब कुरान कोस नॉर्म छि ना न्यूट्रिशनल नॉर्म छि यो याना जैसे कि कैलोरी तो प्रोटीन चि बारंगाम चि तो एनर्जी वगैरह जरे देफिया नचि जरा लोकल गवर्नमेंट जरा काफी आजु बेन होते को देखा जोर बिसा लेने जाना गाची दिया स्क्यू यो देना स्क्यू गाचे जाक्स स्क्यू एन उक यार गाचे स्टनमा स्ट्रेस यो नती लोकल ड्राई स्टनमा स्ट्रेस यो देव ने यंबो गाची दिया यार हलवा यो देव ने मोगाचा यार राजमा ना राजमा राइस यो स्ना यार ची यो जबना गाती खिचड़ी चोक्षी जो से दिखे तम अपन थुपा चोला तम अपन यार दो अक्सर फूल बरगा फिर टेस्ट में पसंद जी यो मित्र देखना गाचे जरा रिसेंटली दो चार मिनट्स ना गाचे चेंज कर जाना दे मीनू गाती गाती यार रेसिपी कमेटी यो दिखे डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीसी सर्विस मॉनिटर बाल बोला दे रेसिपी कमेटी है नाचे पांच चेंज बस ना नाचे राइस राजमा जगते राम फूल ला और मॉर्निंग स्नैक में जगता नाचे जरा बाजरा खीर ता चिंदे नु बाजरा ता चिंदे नु यार दस वा ओरिजिन यो दे नु ता से अलग अलग सिके लिखे चोस हो जरा प्रेगनेंट कुरान सिके चोस हो सुनते फूल कुरान सिके चोस हो 20 ग्राम यो ना अमोल 30 ग्राम हो चिंदा सो जग मीनू नाचे यार सेटअप यो दस वा मोंग यो अच्छा मिलर्स नाचा कंपलसरी बस मिलर्स नु नाचा बाजरा यो बाजरा नाचा गवर्नमेंट कोरेज एनी के सप्लाई बा मैम सप्लाई बना दो 100 ग्राम अच्छे से कंपलसरी गवर्नमेंट जरिए दो पांच तो जरिए बाजरी दूध सा अच्छे से जगह खिचड़ी चौथ बाकी स्क्यू यो जक्षिया जक्षिया मूंग राइस यो जक्षिया राजमा राइस यो जक्षिया हलवा यो दो नेम्बो मो तो चुप आंगनबाड़ी सेंटर है उसके बना फून सागा फून चाय यो मगर दो मॉर्निंग स्नैक को मॉर्निंग स्नैक को खाओ बाजरा खीर यो और हलवा नूंगा अच्छे से खरा मिताऊ हलवा नूंगा अच्छे जेगरी ताऊ चमन अच्छा गिन ना ऑर्डर यो दस्ता की शुगर को साठ को कम बोझ जरिए अलग गवर्नमेंट हिसाब से बाकी बैलेंस डाइट जितना का यार आम दंडेनु मिसा का लोकल सुजयंती तो बैलेंस डाइट को अक्सर मियाँ चीज चीज मिजोक संभिक चौकसी परेशानी कन्फ्यूजन चौकसी छेद आम मियाँ यार एक्सपर्ट छे पता छे सिलखन छे पता छे देखिए यार थाली चार हिस्सा आम गति थाली के चार हिस्सा बावशिन

0: दर्शकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल का एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से बुकिंग बेफिया कॉल बाजत 8700014242 का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।
3: सुनो ना।
1: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

صبر بست خدایا، تمام قام فازت، تركت الخلق طرا في هواك.

0: Miriam Vivikanga chez Akash Fani Kargili Kanazarino to work sport to so to get nominated Nishuiz Naga Sonsu Kasata Akash Fani, the Helikana, Hindi and Grezi, the Naurdiano Kavarun, Rilepit, Rilela, Nabazat
1: Samachar Sandhya Kesat, me lovely nigga. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा. वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई. राहत और बचाव कार्य जारी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की. उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज. सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया. तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा. भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा. आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा. अब समाचार विस्तार से. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है. लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं. श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा.
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है. दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे. ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा. भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे.
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं. इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं.
2: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन.
3: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है. प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण

0: स्थानीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
5: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी

0: ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हारमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य

0: ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चढ़नी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
3: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
2: Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, today said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes rocked the country. The acting president had said earlier that at least 32 people had died after last night's 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes and that the toll was expected to rise. The quakes were among the strongest to strike Venezuela in more than a century and could be felt throughout the region. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the

0: Japan will take on Sweden in Group F match in Arlington, US, tomorrow early morning. The IMD has said that the conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Sub Himalayan, West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अहतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। यकुम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रूपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रूपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तिजारती मुआहदा CETA आलमी मईशत को तकवियत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तिजारती मुआहदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहदों में सबसे जामे मुआहदा है। जनाब पीयूष गोयल 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तिजारती समझौते के निफाज के लिए दोनों मुल्कों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी ताउन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा अहम मादियात और दिगर कलीदी शोबों में ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरका अज़्म रखते हैं। वजीर आजम मोदी ने आज भारत में अमेजन की 48 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अमेजन के CEO एंडी जैसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सरमायाकारी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कास है। मीडिया से बात करते हुए एनडी जैसी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से काफी मुतासिर हैं। उन्होंने भारत की तरक्की के सफर में एक तवील मुद्दती साझेदार बनने का अज़्म जाहिर किया। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी रॉड्रिग्स ने आज कहा कि मुल्क में आने वाले दो ताकतवर जलजले में 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि कल रात 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले के बाद कम से कम 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी। ताहम हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा था। ये जलजले गुज़श्ता एक

मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह सवेरे 4:30 पर शुरू होगा। इससे पहले आज सुबह मोंटेरेरी के मकाम पर जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया पर 1-0 से जीत दर्ज की। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताजियत के इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्दबुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रूपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रूपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।